0: वाले हो, उन महंगे परफ्यूम आते $400-500 लॉन दी बिल्कुल लोड नहीं। रॉयल परफ्यूम्स दी हो चुकी है ग्रैंड ओपनिंग। स्विट्जरलैंड तो इंपोर्ट कीते ऑयल्स नाल तैयार डियोर ते शनैल वर्गी सेम फ्रेग्रेंस जो चले 8 घंटिया तो भी वध। हर परफ्यूम सिर्फ $50 विच अते रेडियो उड़ान दे स्रोतियां लई खास धमाका। बाई टू गेट वन फ्री यानी $100 च 3 परफ्यूम ते नाल इक तोहफा रेडियो उड़ान प्रभ संधु दा रेफरेंस देन ते। अपने आप नूं फुल्लां दी तरह महकाओ। आज ही आओ यूनिट 9-1 रीगन रोड ब्रैम्पटन सिख संगत गुरु घर दे नेड़े जा ऑर्डर करो www.royalperfumes.co ते कॉल करो 4373150701।
1: The 2026 Brampton municipal election is on Monday, October 26th. If you can't vote on voting day, you can vote early during advance voting. Advance voting will take place on October 9, 10, 11, 16, and 17. Voting hours are weekdays from noon to 8 p.m. and weekends from 10 a.m. to 5 p.m. You can vote at any advance voting location in Brampton. Bring your voter notice if you received one and identification showing your name and address to vote. Didn't receive a voter notice? Bring your ID with you to vote and you can update or add your voter information in person. For voting locations, voter information, and a list of candidates, visit brampton.ca/bramptonvotes.

ब्यूटी इंडस्ट्री दी दुनिया विच अपना करियर बनाउन बारे सोच रहे हो ता हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तुहाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सही रा जो प्रोवाइड करदे हन सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ए सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले वी जाने जाते हन। हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लभ रहे हो बेस्ट क्वालिटी दे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुन छू मंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको थां ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लघु शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cashandcarry2023@gmail.com ते। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसे लई तुहाडे लई है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा, बुफे, डाइन इन, टेक आउट, केटरिंग, लंच दे डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स दे स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो की तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ Brampton।

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे आ कोई भी रिपेयर किस भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करोनी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक कम टू स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 9057991478905 799 1478 रॉयल ऑटो सेंटर सेंट्रल मिसिसागा दे रहन वाले हो ए मौका ना गवाओ वैली मोर होम्स वालों डेरी लेन टाउन्स जल्द ही डेरी रोड वेस्ट अते हरंटेरियो ते आ रहे ने कंटेम्पररी टाउन होम हाई $700,000 तो शुरू हो रहे ने सीमित समय ले HST दे विच खास बचत दा फायदा लो हाईवे 401 407 अते 410 गो ट्रांजिट शॉपिंग अते पियर्सन एयरपोर्ट तो सिर्फ कुछ मिनटा दी दूरी ते सब तो पहले बायर्स दे विच शामिल होण दा मौका ना गवाओ अज ही रजिस्टर करो ballymorehomes.com BALLYMORE homes.com

0: 7998877 सोफा स्टूडियो .ca। थैंक यू जी।
1: ओए इन्नी गौर नाल की लभी जाना स्मार्टफोन चो?
2: ओ भरावा ट्रक लिए लोन लभन दिया।
3: स्मार्ट फाइनेंशियल एंड लोन सर्विसेज ते आओ। ट्रक लोन्स, मॉर्गेज, डेट कंसोलिडेशन दिया सर्विसेज पाओ। दलविंदर जज नो कॉल कमाओ 647-504-3297 20 मैरीटाइम ओंटारियो बुलेवर्ड यूनिट 210 ब्रैम्पटन और विजिट www.smartfinancialgroup.com।
4: ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल वार्ड 9 अते 10 लई भरोसे योग उम्मीदवार डॉक्टर आजाद गोयत नु अपना कीमती वोट पाओ।
5: डॉक्टर आजाद गोयत जिन्ना मुद्दा लई जनता दा साथ देन के उना च अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी अते पब्लिक कंसल्टेशन, प्रॉपर्टी टैक्सेस विच कटौती, क्राइम ते एक्सटॉर्शन ते कारवाई, वड्डे बिजनेसमैन अते पॉलिटिशियंस दा नेक्सस तोड़ना, लोकल डेवलपमेंट नाली वार्ड नंबर 9 ते 10 लई गो स्टेशंस नाल कनेक्टिविटी, फुल पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ग्रीन स्पेसेस दी मेंटेनेंस शामिल है।
4: इलेक्शन डेट 26 अक्टूबर 2026। एडवांस वोटिंग ऑन 9, 10, 11, 16 एंड 17 अक्टूबर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट azadgoyat.ca। पेड फॉर एंड ऑथराइज्ड बाय कैंपेन ऑफ डॉक्टर आजाद गोयत।
6: ओए इस साल ता इंश्योरेंस बहुत महंगी हो गई। कार ते ऑटो दी इंश्योरेंस दियां किश्तां ने सारा बजट हिलाता।
7: ओ जी, अमनदीप कौर इंश्योरेंस एडवाइजर दे हुंदियां कोई फिकर नहीं। ए देन के बेस्ट रेट्स इन द मार्केट विद फुल कवरेज।
6: होम, ऑटो, कमर्शियल ट्रकिंग ते बिजनेस इंश्योरेंस ले कॉल करो इंश्योरेंस एडवाइजर अमनदीप कौर होरानो एट 416-618-2761 416-618-2761।
8: स्टीफन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन सेल। इस साल फेस्टिवल सीजन में अपने घर को भी जरूर सजाइए। अपने मनपसंद बेस्ट क्वालिटी हाई एंड ब्रांडेड फर्नीचर पे कोई भी रीजनेबल ऑफर एक्सेप्टेबल होगा तो फिर आज ही स्टीफन फर्नीचर आए और अपने घर को स्टीफन फर्नीचर के बड़े बड़े ब्रांडेड फर्नीचर पे बड़ी बड़ी डील्स का फायदा जरूर उठाएं। सर्विंग सिंस 1992। फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल। टू लोकेशंस टू सर्व यू। 2575 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट ब्रैम्पटन 905-790-0560 6 Marconi Code Bolton 905-951-9394 Stephen Furniture ki dhamakedar festival season।

0: मैं गुरप्रीत सिंह ढिल्लों वार्ड 9-10 तो रीजनल काउंसलर उम्मीदवार मैं 2014 तो 2022 तक तुहानू रिप्रेजेंट किया मेरी एबसेंस विच असी देखिया टैक्स इंक्रीज हाई क्राइम अते एक अजिही काउंसल जिस दे रेजिडेंस नू अनदेखिया किया जो मैं तुहानू रिप्रेजेंट किया मैं टैक्स घट रखे बुजुर्गों ने बस सर्विस मुफ्त की सैटेलाइट पुलिस स्टेशन लिया हजारां नौकरियां लियांदियां सब तो इंपोर्टेंट मैं फजूल खर्च विरुद्ध आवाज उठाई अते तुहाडे कॉज अटेंड कीतियां हुण मैनू करप्शन नू रोकण लई तुहाडी मदद दी लोड है 26 अक्टूबर नू भरखी होई लीडरशिप नू वोट पाओ गुरप्रीत सिंह ढिल्लों नू वोट पाओ
1: ऑथराइज्ड एंड पेड फॉर बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ गुरप्रीत ढिल्लों
2: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
3: ते कार दे खर्चिया नू हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया अपने भविष्य नू सुरक्षा करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ली आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ
2: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम लाइफ इंश्योरेंस डिसेबिलिटी क्रिटिकल इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस विजिटर इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस किड्स प्लान RRSP RESP TFSA कॉल करो
4: एडवरटाइजमेंट करनी है तुसी अपने बिजनेस नू प्रमोट करना ते तुसी साडी टीम नाल संपर्क कर सकते हो 647-5294 6475-5294 दे उपर तुसी संपर्क कर सकते हो।

0: मैं गुरप्रीत सिंह ढिल्लों वार्ड 9-10 तो रीजनल काउंसलर उम्मीदवार मैं 2014 तो 2022 तक तुहानू रिप्रेजेंट किया मेरी एबसेंस विच असी देखिया टैक्स इंक्रीज हाई क्राइम अते एक अजिही काउंसल जिस दे रेजिडेंस नू अनदेखिया किया जो मैं तुहानू रिप्रेजेंट किया मैं टैक्स घट रखे बुजुर्गों ने बस सर्विस मुफ्त की सैटेलाइट पुलिस स्टेशन लिया हजारां नौकरियां लियांदियां सब तो इंपोर्टेंट मैं फजूल खर्च विरुद्ध आवाज उठाई अते तुहाडे कॉल्स अटेंड कीतियां ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਰਖੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ
1: ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਪੇਡ ਫੋਰ ਬਾਈ ਦ ਕੰਪੇਨ ਆਫਿਸ ਆਫ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ

0: कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहिंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असीं कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस ते ओ सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील, वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टैक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: कोई भी कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर, रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस, जिथे कि मैं भी गड्डियां नूं लेके जाना रिपेयर दे लई। रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे आ, कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल, सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है, स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज डायग्नोस्टिक कम च, स्टील्स एंड मेलनी। रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 9057991478905 799 14 78 Royal Auto Center।

तो गांव से खूबसूरत सुविधा, खूबसूरत लोग, खूबसूरत मुल्क सी चलो डिजिटल एएम फ्रीक्वेंसी रही टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक जिसे सुन रहे हो आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं। चलते हैं एक खूबसूरत शो के वाल जिसका आगाज हमेशा उस परमपुरख परमेश्वर के नाम ओटासरेना जिसके नाम ओटासरेना आगाज दुनिया की हर एक शेयर उम्मीद दिन खुशगवार रहेगा, चढ़ती कला वाला रहेगा, निरपाओ निर्वैर रहेगा, मुस्कुराहट चेहरे का हिस्सा रहेगी, रोशनी रस्ते दिखावेगी, तो चलते रहोगे।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਣਤਾਸ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਸ ਤੱਗੜ ਦੇ ਨਾਲ।
1: Disclaimer, the content shared on this radio show is for informational and entertainment purpose only. The hosts are not liable for any actions taken by listeners or callers based on the information provided. Enjoy.
2: Thadi insurance di renewal aa rahi hai, jivein ki auto insurance, home insurance, truck insurance, ya fir business insurance, tan tusi mainu contact kar sakde ho. Main kai insurance companies to quote compare karke thode layi sahi coverage te vadhiya rate labh sakdi haan. Jyada jankari vaste tusi mainu contact kar sakde ho. Call or text at 647-919-1002-647-919-1002.
3: मैं नवा घर लिया, तेन पता है प्रॉपर्टी इतनी महंगी है, नाले मैं एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली है, एक भाई मैं बेसमेंट भी बनाई है ब्रम्पटन वाले घर दी, नाले मैं सोचता हूँ वॉशर एंड ड्रायर भी चेंज कर ही दईए, हुन समझ नहीं आ रहा अप्लायंसेस कित्थों लईए।
4: हो जी, एदे च समझण वाली केड़ी गल है, सारे कमां लई इक्को जगह, चलो मिसेस अगर स्टील ते अप्लायंस जंक्शन ते, इना दे प्राइस ते सर्विस नु कोई बीट नहीं कर सकता, तुसी 6 मंथ तक दी पेमेंट भी बनवा सकदे हो, सारे ब्रांड्स दी ऑथराइज्ड डीलर्स भी ने, मिसेस अगर स्टील ते अप्लायंस जंक्शन, कॉल 905-450-0054, 905-450-0054।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647702 V23
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: भाई ये ट्रक तो हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया, हुण सोचदा वी कोई यूज ट्रक ही लै लवां, पर समझ नहीं आउंदी वी कित्थों लवां।
3: ओए इहदे च सोचण वाली कड़ी गल आ, ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखू नूं कॉल कर, ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं।
4: जी हाँ, जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड़ है ते तुहाडी पसंद दा मेक एंड मॉडल दा ट्रक तुसीं इहनां तों लै सकदे हो। अपना ट्रक वेचण लई वी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 स्ट्रेटन एवेन्यू ब्रैम्पटन। कॉल विल सेखो 416-819-6000।

0: 7 केक्स एंड पेस्ट्रीज 1997 तो थोड़ी सेवा करता आ रहा है। केक्स पेस्ट्रीज मठियाइयां समोसे ते पार्टी डेकोरेशन भी ले सकते हो। नकल करके केक्स ते पेस्ट्रीज बेचण वालियां तो बचो ते जसपाल नागरा नु फोन करो।
1: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल इंजॉय करन नू वर्ल्ड्स बेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है ते नाले टिलो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री होर दस क्या चाहिदा
2: चल क्या रहे यहां पर
1: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस
3: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है
1: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गोर रोड 905 204 13 13 जां tillovideo.com

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट। हुण 3 लोकेशन तो सर्व कर देने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888। दैट्स 9054608888।
1: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
3: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
4: यार इना इंश्योरेंस ने ते धुआं कढ़ाता, वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा?
5: टॉप फाइनेंशियल इंक तो, जो अपनिया बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने।
6: क्रिटिकल मॉर्गेज, RESP, RRSP, विजिटर इंश्योरेंस, सुपर वीजा, स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स। जे तुहाडे कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने तां तुहानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे।
5: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नूं 647-300-3100
6: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन।
7: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000.
8: Toronto's number one station, AM 530.
9: Punjabi Versa!

0: 1530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: हेलो
2: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
3: हां जी कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
2: इंडिया दी टिकटा चाहिदी सी
3: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो इंडिया किथे जाना
2: चार टिकटा दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी मिल जानगियां
3: बिल्कुल मिल जानगियां दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है बस दसो की टिकटा कदों दी चाहिदियां ने ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने
2: पर उसे मन सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
4: 32-55-80 98
2: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
4: काउंटिंग नहीं ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने
5: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बम रोड टोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: The wait is finally over. Gordy Kumin of Remax Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at Remax Gold Realty to book your unit today.
2: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
3: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
2: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
3: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
4: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
3: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
4: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
3: 416-509-1509
4: और विजिट insuranceforyou.ca।
5: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तुहाडा मनपसंद सामान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते, क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मां। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दालां, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स जां फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी सामान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस लई अज ही विजिट करो अनाज मां, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते एट 6141 मेफील्ड रोड यूनिट।
6: दोस्तों, मैंने फिंगर बढ़ा ली ते मैं आ रहा जी 11 अक्टूबर टोरंटो रोज थिएटर दे अपने शहर थोड़ी डिमांड
7: बदलाम करती है
6: ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

0: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਗੀਤ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੋਰਗੇਜ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਰਗੇਜ ਰੀਨਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮਿਸਡ ਮੰਥਲੀ ਮੋਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੁਇਟੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇਹ ਆਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਰੇਡੀਓ।
1: ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲਿਸਨਰ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਟਸ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਔਰ ਆਪ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿਰਨ ਜੀ ਆਪਕੇ?
0: ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਦਮ ਬੜੀਆ।
1: Zabardast, very nice, thank you so much. I'm here to give you more mortgage update.
0: Ji bilkul ji, definitely. Acha Mukesh ji, kyunki hum log ne last week bhi baat kari thi, is pe kafi sare listeners ka jo hai response tha and they are just approaching you for the questions, which is very good, kyunki unke sawals jo hai koi answer kar pa raha hai. This is what we want, hai na? So pehla question mera hai ki bahut sare home owners hain jinka is time mortgage ka jo hai renewal aane wala hai, and मोस्टली क्या उन्हें करना चाहिए कि जो उनका रेट है उस पे साइन कर देना चाहिए, कि उन्हें थोड़ा सा शॉप अराउंड भी करके देखना चाहिए, क्या करना चाहिए?
1: जी जी जी, रिन्यूअल्स की बात कर रहे हो आप, बहुत ही जी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कंसर्न मैं बोलूंगा। रिन्यूअल्स के लिए देखिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। किसी भी होम ओनर के जब रिन्यूअल आता है तो आपके पास 5 to 6 months का टाइम होता है। मोस्ट ऑफ द बैंक आप अपने देखेंगे, काफी जो कॉल्स आती हैं उनको यही होता है जो चैलेंज के भाई हमारा रिन्यूअल कब, हमें ऑफर कब मिलेगी। तो मोस्ट ऑफ द बैंक वो आपका रिन्यूअल जो है विद इन 6 months आपका एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट बोले तो आपको ऑफर देता है बैंक कि आपका नया रेट अब ये होगा, राइट? अब मैं चैलेंजेस बताता हूँ, राइट, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं होम ओनर को। देखिए सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज ये होता है कि अगर उनका रेट इंक्रीज हो गया, राइट, रेट इंक्रीज होगा तो मंथली पेमेंट बढ़ेगी, राइट, मंथली पेमेंट बढ़ेगी तो बजटिंग उनकी हिलेगी। दूसरा बड़ा इश्यू आता है कि हम वेरिएबल रेट या फिक्स रेट लें, राइट, और तीसरा है अगर पेमेंट बढ़ गई तो उसको पेमेंट कैसे करेंगे, राइट, और सबसे जो चौथा है अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड डेट्स हैं, सेकेंड मॉर्गेज ले रखी है आपको, साथ साथ उसके ऊपर अलग से आप हर महीने पे कर रहे हैं और मॉर्गेज भी साथ साथ इंक्रीज हो गई है, तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अच्छा, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है जो कि हमें बेस्ट रेट के लिए क्या करना चाहिए, मैं आपको आंसर करता हूँ। देखें सबसे पहली बात तो है कि अगर आपको रेट्स इतना अच्छा आपको एग्जिस्टिंग बैंक देगा और कोई नहीं देगा, राइट, सबसे अच्छा एग्जिस्टिंग बैंक, दे डोंट वांट टू लूज यू, दे डोंट टू लूज द बिजनेस एज वेल, तो अपने बैंक से नेगोशिएट करें अच्छे रेट के लिए, प्राइसिंग के लिए, राइट। अब आती है चैलेंजेस के ऊपर, मैं बात करता हूँ अगर आपकी पेमेंट इंक्रीज हो गई तो क्या करेंगे। देखिए अपने बैंक से कम्युनिकेट करें, आप ब्रांच विजिट कर सकते हैं, ईमेल पे बात कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, राइट, लेटर डॉक्यूमेंट दूसरे 2-3 बैंकों से अपना रेट लीजिए क्या रेट पड़ रहा है। अगर आपके कुछ क्रेडिट में चेंजेस आई हैं, इनकम में चेंजेस आई हैं और मगर साथ साथ आपको डेट्स पे करने हैं, देखिए रिन्यूअल के टाइम पे यू नीड टू अंडरस्टैंड आपको कोई पेनल्टी नहीं पे करनी टू स्विच द बैंक, राइट। तो अगर आपके कुछ इनकम और क्रेडिट में इश्यूज हैं तो अपने बैंक से बात करें कि हमारे पास 50,000 का डेट्स है वो पे करना चाहते हैं, हमें 1,00,000 की इक्विटी दिला दें होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट। मगर आपको लगता है कि बहुत सारे इश्यूज हैं आपके फाइल पे, आपके डेट ज्यादा है, इनकम थोड़ी कम हो गई है, लास्ट ईयर जॉब की अभी जॉब नहीं है, तो आप मेरी तरह किसी भी प्रोफेशनल से बात करें, मुझे कॉल कर सकते हैं, आई विल मेक श्योर कि आपकी मॉर्गेज के लिए क्या राइट सोल्यूशन है। एवरी इंडिविजुअल, देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड का अलग सोल्यूशन है, फुल टाइम लोगों का अलग सोल्यूशन है। अगर आपका क्रेडिट लास्ट ईयर 700 था अभी 600 हो गया है, या आपने कोई कलेक्शन इश्यूज आ गए हैं, कुछ 1-2 पेमेंट मिस करी है, मॉर्गेज पेमेंट मिस करी है, तो उसका सोल्यूशन अलग है। तो बट यही बोलूंगा मॉर्गेज रिन्यूअल्स के लिए डेफिनेटली अपने बैंक को रीच आउट करें, नहीं आपको जवाब मिल रहा, आपकी मंथली पेमेंट कर कम करनी $1,000-1,500, आई हैव अ सोल्यूशन, राइट। अभी एग्जाम्पल है 30 साल आपकी एमोर्टाइजेशन 15 साल रह गई है, राइट, अभी आप उसको जैसे ही इंक्रीज करेंगे 30 साल पे तो किरण जी आपकी मंथली पेमेंट कम होना शुरू हो जाएगी, राइट, और साथ साथ डेट्स भी अपने पे हो सकते हैं। तो आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, रिन्यूअल से रिलेटेड, मॉर्गेज रिन्यूअल से रिलेटेड, और रेट के लिए आप जो है अभी भी चिंतित हैं कि बैंक से अच्छा कोई रेट दे सकता है, तो डेफिनेटली मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे पास अभी वेरिएबल रेट बहुत ही बढ़िया है, 3.49 से लेके 3.69% 3 to 5 year वेरिएबल, 3.49 to 3.79 3 to 5 year वेरिएबल। क्लोज मॉर्गेज है 3.99 से लेके 4.35। सो इट डिपेंड्स, आपके पास वेरिएबल लेना चाहिए, फिक्स लेना चाहिए। जब मुझे कॉल करेंगे आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू कि आपके लिए फिक्स अच्छा है या वेरिएबल अच्छा है। दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर फ्रॉम मॉर्गेज डिलीजन। नंबर टू कॉल मी 6475127000 6475127000।
0: बिल्कुल मुकेश जी। सो ये तो बात हम लोग ने की कि ठीक है अगर मॉर्गेज रिन्यूअल आ रहा है। अच्छा, मेरा सवाल और बहुत सारे लोगों का ये सवाल जरूर होगा उनके दिमाग में कि अगर पहली बारी जो कोई घर ले रहा है ना, फर्स्ट टाइम होम ओनर है एंड उनकी उन्हें मॉर्गेज लेनी है, सो आप उन्हें क्या एडवाइस करोगे?
1: देखिए, फर्स्ट टाइम आप घर ले रहे हो तो सबसे पहले तो आपका क्रेडिट अच्छा होना चाहिए 700 एंड अबव होना चाहिए दोनों का। आपके पास डाउन पेमेंट अरेंज होनी चाहिए। अगर डाउन पेमेंट आपके गिफ्ट पेरेंट्स दे रहे हैं, आपके फैमिली फ्रॉम बैक होम से दे रहे हैं, तो उसकी अरेंजमेंट 3 महीने पहले ही आपके अकाउंट में होने चाहिए। अगर आपको क्लोजिंग विद इन 3 months आ रही है तो उसका प्रूफ होना चाहिए, पैसे आपके पेरेंट्स ने भेजे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों की जॉब्स, किसकी जॉब्स है, इनकम क्या है। देखिए, आपकी मॉर्गेज होगी आपके इनकम के हिसाब से होनी चाहिए, राइट? और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए एक अलग फॉर्मूला है, बट ये कि आप हमेशा मेरी तरह किसी प्रोफेशनल को रीच आउट करें, पहले प्री अप्रूवल लेटर लें ताकि आपको क्लैरिटी हो कि आप क्वालिफाइड कितनी अमाउंट के लिए करते हैं, 5 लाख के लिए है या $1 million के लिए या 2 million के लिए। हर इंडिविजुअल का आंसर अलग है, बट वेरी इंपॉर्टेंट ये कि क्रेडिट अपना मॉनिटर करें। मॉर्गेज से 3 महीने पहले कोई भी इंक्वायरी मत करें, कोई मोबाइल नहीं अप्लाई करें, कोई नई लाइन मत लीजिए, कोई नया क्रेडिट कार्ड मत अप्लाई करें, कोई पेमेंट मिस मत करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जैसे ही अपना आपका क्रेडिट हिट होता है, महीने में 2 या 3 दफा ज्यादा आपका क्रेडिट नीचे आना शुरू हो जाता है, राइट? और मेक श्योर करें अपने कोई अकाउंट से कोई बड़ी ट्रांजैक्शन ना करें, बैंक को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी आपको। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप मेरी तरह किसी भी प्रोफेशनल को रीच आउट करें। आप स्पेशली फर्स्ट टाइम होम बायर है, फर्स्ट टाइम होम बायर का किरण जी हमेशा ये बहुत ही चिंतक होता है, ये सब कैसे होगा, ये कैसे घर मिलेगा, हमारी मॉर्गेज कैसे होगी, डाउन पेमेंट कहाँ से आएगी। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं मिसेस आगा में होता हूँ, मिसेस आगा और डेरी ऑफिस है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। मॉर्गेज रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है ये बताऊंगा किरण जी, अगर आपने कोई मॉर्गेज पेमेंट मिस करी है, सॉरी मॉर्गेज पेमेंट मिस करी है, 1 payment 2 या 3 payment, आप किसी का वेट मत करें, राइट अवे आप कॉल करें, आई हैव अ सॉल्यूशन। क्रेडिट कार्ड पेमेंट मिस करी है, आई कैन एडवाइज यू व्हाट टू डू। घर में इक्विटी है या नहीं है ये इंपॉर्टेंट मैटर करता है। मैं आपके लिए कह सकता हूँ कि आई विल पर्सनली चेक विद द अप्रेजल कंपनी व्हाट इज योर वैल्यू बिफोर यू पे फॉर अप्रेजल। सो अप्रेजल वैल्यू चेक करके बताऊंगा। घर में इक्विटी है तो रीफाइनेंस करवाएं, 1 लाख 2 लाख के डेट्स हैं तो रीफाइनेंस करके सारे डेट्स खत्म हो सकते हैं। एम्प्लॉयड का इश्यूज अलग है, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अलग है। ट्रकिंग इंडस्ट्री में स्पेशली अगर आपको मॉर्गेज लेने में दिक्कत आ रही है, आपको अलग से होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए, मॉर्गेज डिस्टर्ब नहीं करना है। विद इनकम विदाउट इनकम दोनों ही है सॉल्यूशन है, स्पेशली पीपल हु आर विद अ बैड क्रेडिट। अगर आपने कंज्यूमर प्रपोजल या बैंकरप्टसी पास्ट में की थी या अभी आपका क्रेडिट बहुत खराब हो गया मगर आपको फंडिंग चाहिए, आई कैन हेल्प यू, चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल फाइनेंसिंग करवानी हो। गिव मी अ कॉल, दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर फॉर मॉर्गेज डिलीजन। नंबर टू कॉल मी 6475127000 6475127000।
0: थैंक यू जी, थैंक यू।
2: लिसन लाइव वचनों दो रेडियो विद सुखी निचर।
3: जी दोस्तों, एक बार फिर वतनों दूर दे आप सब का स्वागत है, जिथे किरण हो रही और मोना जी स्टूडियो दे विच आ, और उसके इलेक्शन भी आ उन्होंने उत्ते भी शर्मा जी हुण बोल के गए, तो होर भी असी जिहड़े भी कैंडीडेट आ अपने इनपुट पाउणे चाहुंदे आ। नंबर है 9057990999। और पिछले कुछ दिनों तो तुहानू दसते आ रहे हैं कि थोड़े शहर दे विच एक बहुत वधिया शाम होनी है 11 तरीक नूं, 11 अक्टूबर नूं रोज़ थिएटर दे विच, और तुहाडी डिमांड दे उत्ते एक बार फिर पूरे बैंड दे नाल पूरी टीम दे नाल वडाली खानदान दा चिराग लखविंदर वडाली पहुंच रहे ने ते इस टाइम साडे नाल ओ फोन दे उत्ते ने और कुछ गल्लां बातां उहनां दे नाल करदे आ कि ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
4: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੁੱਖੀ ਭਾਅ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ
3: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਟੀ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 5:30 AM ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਫੁੱਲ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਫੁੱਲ ਹੋ ਵੀ ਵੀਕਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਡੇ ਹੈ 11 ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ
4: ਵੀਕਐਂਡ ਵੀ ਹੈ
3: ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਵੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਆ
0: ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ
3: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਕਿਰਨ ਹੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ
4: ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਬਟ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਟਿਕਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਇਸ ਵਾਰੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਟਿਕਟ ਤੇ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਪਲੱਸ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਡੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਨਰਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹਾਲ ਫੁੱਲ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਓਦਾਂ ਹੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲੂਗਾ ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 70-80% ਸੋਲਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸ਼ੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ
3: ਜੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਡ ਇਨ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਦੂਜਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਇਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਬਹੁਤ
4: ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਆਡੀਅੰਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਪਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ
3: ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ
4: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ
3: ਹਾਂ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ
4: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ
3: ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਨ ਸਪੌਂਸਰ ਮੋਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਨੇ ਮੋਨਾ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਨ
5: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੁਖੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੀਦੇ ਆ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਦਾ
4: ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ
3: ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੋਰੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ
0: ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ
4: ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
3: ਜੀ
4: 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 6-7 ਜਾਂ 8 ਵਜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ
3: ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ
4: ਜੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਡੀਅੰਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ
3: ਜੀ।
4: ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਪਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ।
3: ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ।
4: ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸੁਖੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ।
3: ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਭਰਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ।
4: ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਕਤੋਂ ਦੂਰ ਦਾ ਤੇ ਵਡਾਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਹੁੰਚੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ।
3: ਹਾਂ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੋਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ

0: 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
1: सर्दी के दिन आने वाले हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है, तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन, ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए enbridgegas.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।
0: The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ। कॉल करो उमरप्रीत चावला नू जिना तो मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकते हो। विजिटर

फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तो सीधे अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015

0: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
1: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
2: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तो सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते।
0: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नूं कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381। Solution to promote your business. Desh Pardesh Prime Time Radio and TV. Tohade ang sang 24 ghante satto din. Hun tak Desh Pardesh Prime Time Radio hazara hi business di grand opening live on location nal karwa chukya hai. Te karwa rya hai. Impossible is nothing. Tusi bhi apne business vich vada karan waste Desh Pardesh Radio da live on location Friday Saturday karwao. For bookings call Tejinder Sidhu at 416-725-2551 416-725-2551.

0: सर्दी के दिन आने वाले हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन, ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए enbridgegas.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
2: Ontario te aa rahe ne, contemporary town home, high $700,000 to shuru ho rahe ne. सीमित समय ले HST दे विच खास बचत दा फायदा लो। हाईवे 401, 407 अते 410, गो ट्रांजिट, शॉपिंग अते पियर्सन एयरपोर्ट तो सिर्फ कुछ मिनटा दी दूरी ते। सब तो पहले बायर्स दे विच शामिल होण दा मौका ना गवाओ। आज ही रजिस्टर करो ballymorehomes.com, ballymore.com। कोई भी कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर, रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस, जिथे कि मैं भी गड्डियां नूं लेके जाना रिपेयर दे लई। रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे आ। कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल, सेफ्टी सर्टिफिकेशन, ऊबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है, स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक कम च, स्टील्स एंड मेलनी। रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 9057991478905799 1498 905 799 1498 Royal Auto Center।

0: क्या बात है। सो ए दिन रोज नहीं होने फिल्म रिलीज होने जा रही है 9 तारीक इस फ्राइडे थोड़े सारे सिनेमा घर अंदर वेट। सो गेट रेडी 9390 वेरे किदा की आला
1: बहुत दिन वेरे तुसी सुनाओ जी
0: बड़े किथे रहने हो ज्यों समर खत्म हुंदी है तां क्रिसमस दी शॉपिंग शुरू कर दिंदे आ सारे।
1: हां डेफिनेटली वेखो पहला हैलोवीन फिर क्रिसमस हां जी थैंक्सगिविंग भी आ रहा।